0: 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4?
1: 4।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2। Big 106.2.

0: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
1: 2 या 4?
0: 4।
1: कब तक वापस लौटेगा?
0: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
3: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: फातिमा।
1: मैंने है ना फैसला किया है।
2: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
1: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना
2: क्या कर सकता हूँ।
3: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The beat of

इट्स टाइम फॉर द मोस्ट लेट बैक चिल्ड आउट शो ओवर द वीकेंड. शो का नाम है द बिग बिंज विद मी सिड. और क्या काम करता हूँ मैं, आपके हार्ड अर्न्ड वीकेंड का इंश्योर करता हूँ कि एक सेकंड भी वेस्ट ना हो इन यू नो सिफ्टिंग थ्रू ऑल ऑफ दोज रिव्यूज, क्या देखें क्या नहीं देखें. ये इनडिसिशन को डिसीशन में बदलने में आपकी मदद करता हूँ. वी फोकस ऑन OTT मूवीज, OTT शोज. दोज ऑप्शंस आर टू मेनी राइट दीज डेज. उसमें से कौन सी एक चीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, इस बात पे क्लैरिटी हम लोग लाने वाले हैं. व्हाट इज दैट वन शो और मूवी दैट वी गोना टॉक अबाउट टुडे. अनुराग कश्यप बॉबी देओल की बंदर. सो स्ट्रीम इट, स्किप इट, गुड पार्ट्स बैड पार्ट्स ऑल ऑफ दैट कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And now, let's talk about the good aspects of Anurag Kashyap's Bandar. The biggest reason, sabse bada karan ki aapko Bandar dekhni chahiye is Bobby Deol. And ye wo swaggering, larger than life Bobby Deol nahi hai, who we've seen in films like Animal. His character here is insecure, frightened, aging, losing relevance. It's almost like Bobby playing Bobby before he did Ashram, right? He's gradually losing control over his entire life, making questionable decisions. There's something almost pathetic about him. And kabhi-kabhi to aisa lagta hai that Bobby Deol is actually very good at allowing himself to look weak. Bahut kam aise actors hain Bollywood mein jo aise script ke liye haan kahenge, jisme ki they are like completely vulnerable and doing really crazy things in life, and most importantly looking weak on screen. Bobby Deol ne haan kar di, bahut badi baat hai yaar. The other thing that works is the world jo ki Anurag Kashyap ne create ki, he's a champion at doing that. And ek bar Summer, yani ki Bobby Deol ka character, he enters the police and the prison system, ये फिल्म काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक, डीपली अनकंफर्टेबल हो जाती है. एंड देन इसको एक कन्वेंशनल क्राइम थ्रिलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई फाउंड अबाउट दिस फिल्म, राइट? इट्स मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, इन डिस्कवरिंग कि एक बार सोसाइटी किसी बंदे बंदी पे एक ओपिनियन जाहिर कर देता है, इट काइंड ऑफ डिक्लेयर्स एन ओपिनियन अबाउट समबडी, देन वॉट हैपन्स टू दैट कैरेक्टर वन सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड द सिस्टम हैव ऑलरेडी त्यागोड somebody, उसके बाद क्या दशा होती है. इट्स अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी. सानिया मल्होत्रा की परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली फैबुलस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बंदर गिव्स यू समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. ये नहीं कि फिल्म को आप सिनेमा हॉल में छोड़ पाओगे. यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट, डिस्कसिंग, आर्ग्यूइंग अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हूएवर्स वॉच्ड इट फॉर डेज आफ्टर. सो दोज आर द गुड थिंग्स अबाउट दिस फिल्म. कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, व्हाट आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट अनुराग कश्यप एंड बॉबी देओल्स बंदर, राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी, सिड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. We're talking about Anurag Kashyap's Bandar. And here are the not so good things about this movie now out on Z5. Now, the thing is, ki jo kahani hai na, kafi complicated hai. It is a very deeply sentimental and very important kind of a kahani. But when you have, you know, a story like this, you expect the opinions to be a bit layered, right? ये फिल्म काफ़ी वन साइडेड लगी मुझे कि इनका जो ओपिनियन है द फिल्म मेकर्स द राइटर्स इनका ओपिनियन इज क्वाइट क्लियर एंड वेरी वेरी वन साइडेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सो दैट इज वन थिंग अगर मैं बाल की खाल निकालूँ तो एंड द सेकेंड थिंग इज के द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज नॉट एज ग्रिपिंग एज द फर्स्ट हाफ कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी फिल्म रेपिटेटिव लगती है एंड पर्टिकुलरली जब वो जेल के अंदर प्रिजन लीगल सिस्टम की बात होती है तो थोड़ा सा हाँ ये देखा देखा सा लगता है वापस सो इन केस यू एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ट्विस्टी कोर्टरूम थ्रिलर बेसिकली अगर आप सेक्शन 375 वर्सेस बंदर करो तो देन सेक्शन 375 इज क्लियरली द विनर इन साइड द कोर्टरूम बट इट्स डार्कर स्लोअर मच मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमिलिएशन एंड या मतलब कैरेक्टर स्टडी ये है लेकिन उसमें भी उतना लेयर्ड नहीं है जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नाउ इट ब्रिंग्स अस टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराग कश्यप की बंदर देखी जाए या नहीं देखी जाए स्ट्रीम इट और स्किप इट कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल राइट ऑन द बिग बेंच विद मी सिड

This is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. ज्ञान बाजी बहुत हो गई, अब बताओ सिड, देखें कि नहीं देखें? अनुराग कश्यप बॉबी देओल की बंदर, इट्स आउट, इट्स स्ट्रीमिंग ऑन Z5. शुड यू स्ट्रीम इट और शुड यू स्किप इट? फॉर मी बंदर इज अ डेफिनेट स्ट्रीम. इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस हर बात से अग्री करता हूँ जो कि ये फिल्म कह रही है. इनफैक्ट कुछ चॉइसेस ऐसे हैं दैट माइट एक्चुअली बॉदर यू, लेकिन दैट्स पार्टली व्हाई इट वर्क्स, राइट? बॉबी देओल को एक सबसे इंटरेस्टिंग रोल में अगर आप देखना चाहते हैं इन ईयर्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज यू नो स्वैगर भरे एनिमल या फिर आश्रम वाला वो रोल, इट फील्स लाइक अनुराग कश्यप इज रिटर्निंग टू दैट यू नो दैट काइंड ऑफ जोन ऑफ फिल्म दैट वी आर बिग फैंस ऑफ, राइट? वो जो देवडी टाइप की फिल्में थी, दैट इज एक्चुअली what Bandar is most similar to. Grimy, uncomfortable territory that he handles best. And by the end of it, aapka ek opinion zarur hoga. You might love it, you might not like it very much, but you definitely will walk away with an opinion after watching this film. So, if you're watching it with the expectation ke har ek frame mein main entertain hoonga, to aisa shayad na ho in the conventional sense. It's dark, it's uncomfortable, this film is. And occasionally, it does feel ke yaar, थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन अगर आपको उस टाइप की फिल्में पसंद हैं दैट लीव यू डिस्कसिंग द कैरेक्टर्स, द स्टोरी, द फिल्म, यू डोंट वांट टू लीव अ फिल्म इनसाइड द सिनेमा हॉल, देन बंदर इज वर्थ द वॉच. इट्स स्ट्रीमिंग नाउ ऑन Z5, ऑन द बिग बिंज. माय वर्ड इट इज, स्ट्रीम इट. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड, ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

All right, it's time for you to sign off from the Big Bins right here on Big 106.2 The Beat of Bollywood. Har weekend, ye wo show hai jisme hum log kisi na kisi OTT film ya OTT show ke baare mein baat karte hain. Whether you should watch it, whether you should not watch it, what are the good parts, what are the bad parts. Aaj ka show aapko kaisa laga? You can always leave a comment on our Insta page 106.2 Big FM. That's our Insta handle 106.2 Big FM. I'm Sid Seth, S-I-D-S-E-T-H. If there's a recommendation that you have, koi aisa show hai, koi aisi film hai OTT wali, jo aapki वॉचलिस्ट पे बहुत टाइम से है और आप कभी हाँ कभी ना कर रहे हैं, देन आई कुड वॉच इट फॉर यू एंड देन डू अ बिट ऑफ अ रिव्यू और राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड एवरी सैटरडे फ्रॉम 7 to 9 PM एंड देन संडे फ्रॉम 10 AM to 12 PM राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 36.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: इस हफ्ते और नंबर 26 इसी के साथ और नंबर 25 जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो पति पत्नी और वो दो से आदित्य रिखारी श्रेया घोषाल ऑन द वोकल्स
1: नंबर 26

0: आई थिंक अगर हम न्यू ईयर्स का भी काउंटडाउन करेंगे ना, धुरंधर एंड धुरंधर 2 के गाने उस काउंटडाउन में 100% होंगे. आई थिंक ब्रिलियंट म्यूजिक, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2, स्टिल स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नंबर 24. प्लेइंग द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक, यह है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन मानसी. नाउ मूविंग ऑन टू अ सॉन्ग व्हिच आई टोटली लव, बट मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं ऑन 23. वी गॉट दिस वन फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, कॉमेडी थ्रिलर है एंड ये थिएटर्स में आई थी ऑन द 30th ऑफ जुलाई. इसे लिखा भी और डायरेक्ट किया है विवेक अग्रवाल ने. द मूवी मार्क्स द फर्स्ट सोलो लीड रोल ऑफ द पॉपुलर डांसर एंड एक्टर राघव जुयाल. सेट इन लंदन, द स्टोरी फॉलोज राघव जुयाल हु प्लेज अजय इन द मूवी. स्ट्रगलिंग ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर है हु ड्रीम्स ऑफ हिटिंग इट बिग इन बॉलीवुड एंड आफ्टर रनिंग अ मैसिव क्रिकेट गैम्बलिंग डेट ही बोरोज अराउंड 10,000 pounds फ्रॉम लोकल गून जिनका नाम है संजय कपूर. एंड उसके बाद क्या होता है इज वेरी वेरी क्योटिक. द मूवी हैज सम फन पार्ट्स बट आई थिंक कॉन्सेप्ट काफी डन एंड डस्टेड है. बट आई लव राघव जुयाल इन द मूवी एंड आई टोटली लव द रीमेक ऑफ इस हफ्ते नंबर 23 पर. इसी के साथ ऑन 22 वी हैव गॉट अनदर वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो तनिष्क बागची विद यही कहना मेरी तो कर दे स्टे राइट हियर. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन प्लेइंग द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक ऑन मानसी. Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theatre on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

आई थिंक मिलेनियल्स ने ये प्रूव कर दिया कि हमारा रिश्ता एंड हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स इमरान हाशमी बहुत पुरानी है. दैट इज व्हाई मेकिंग आवारापन 2 वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इमरान हाशमी सोलो हिट एवर. This is the Big Bollywood Countdown. Mansi playing you the top 40 hits of the week. Now moving on to Gaana number 20. Very, very strong. The entire album is strong. One of the biggest franchises ever. I'm talking about Aditya Dhar ki Dhurandhar se.

मस्कारा लगा के ये मूवी मैं तो नहीं देख पाई, बिकॉज पूरा मस्कारा बह गया, इतना रोई हूँ मैं ये मूवी देख के। आई स्टार्टेड द मूवी फॉर द रोमांस बट इट टुक मी समवेयर एल्स। इफ यू हैवंट सीन द मूवी इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। दिस वीक फ्रॉम इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा ऑन नंबर 17। वॉच दिस मूवी फॉर नसीर साहब। ही इज अ ग्रेट एक्टर वी ऑल नो, बट आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्टेस्ट वर्क एवर। ऑफकोर्स इम्तियाज अली अगर डायरेक्ट कर रहे हैं नसीर साहब को तो कुछ कमाल तो बाहर होना ही है, कुछ मैजिक तो क्रिएट होना ही है, एंड दैट्स वॉट आई थिंक दिव डन टुगेदर। ब्रिलियंट कास्टिंग है, वेदांग रैना इज गुड, शर्वरी, दिलजीत, बट आई थिंक यू कांट टेक योर आईज ऑफ नसीर साहब। इस हफ्ते अ ब्यूटिफुल वन, रहमान साहब का म्यूजिक ऑन नंबर 17। मूविंग ऑन टू नंबर 16, वी हैव गॉट दिस वन फ्रॉम मुसाफिर कैफे। And if you're wondering, season 2 announced to ho gaya tha just 12 days after the first season. Aayega kab? I think pre-production state mein hai. End of 2027 tak hume intezar karna padega. It's a long wait. But yeah, beautiful, beautiful show. I might just rewatch the show after a few months. Filhal from Musafir Cafe on number 16. Number 16.

ओरिजिनल गाना बॉम्बे रॉकर्स का years later recreated for Dhurandhar 2 इस हफ्ते ऑन नंबर 2. वाओ दैट राइम्ड. फिलहाल प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक आई एम मानसी. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. देयर वाज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम कि इस हफ्ते गाना नंबर 1 कौन सा होगा. 80% of you guessed it absolutely correct. If we have Imran Hashmi, I don't think so. कोई और नंबर 1 की जगह ले सकता है.

तीन हफ्ते से कंसिस्टेंटली ऑन नंबर वन फॉर रीजन, बिकॉज अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, अगेन नंबर वन पे, तो फिर आओ दोबारा. इसी के साथ मेरा यहाँ से आने का नहीं जाने का टाइम. आई विल नाउ सी यू ऑन मंडे, एंड अंटिल देन यू कैन से हेलो टू अस ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. हैव अ ब्रिलियंट वीकेंड. नंबर

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड आज ऐसी चीजों के बारे में रेकमेंडेशन में देने वाली हूँ जो आप मुझसे बिना पूछे मत खा लेना यार। मतलब द कॉम्बोज, द डुओज, जिसको लगता है कि हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये थर्ड चीज जैसा एग्जैक्ट सेम टेस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स विद टोमेटो माइट टेस्ट यू लाइक अ पिज्जा। ये सही में हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं टेस्ट करके आ चुकी हूँ। ऑल दीज कॉम्बोज आई एम गोना लेट यू नो। बिना रिकमेंडेशन के खा मत लेना, बता रही हूँ वरना। खाने के साथ ऐसा फन नहीं करना है मुझे, ठीक है, ऐसा एडवेंचर नहीं करना है मुझे। आई एम गोना रिकमेंड यू द डुओज व्हिच एक्चुअली टेस्ट लाइक अ थर्ड पर्सनालिटी ऑफ फूड। आई विल टेल यू इन अ बिट, अंडरलाइन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

वाटरमेलन टेस्ट करेगा या नहीं करेगा अगर हम लेमन और सिनेमन पाउडर को कंबाइन करते हैं. दैट शुड टेस्ट लाइक कोका कोला फ्लेवर. एंड जस्ट नॉट दैट, द वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन आई एवर हर्ड ऑफ इज लाइक बनाना प्लस मेलन. वो अगर आप कंबाइन करते तो आपको बबल गम फ्लेवर मिलता है. जस्ट नॉट दैट, बनाना एंड एवोकाडो वुड टेस्ट लाइक यू एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम रियली? वी गोना टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. एंड इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स आती हैं द वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूकम्बर प्लस शुगर खाएं या क्यूकम्बर प्लस एप्पल खाएं तो इट शुड टेस्ट लाइक वाटरमेलन टू मी. ओके एंड आई हैव ट्राइड. बताती हूँ इफ यू शुड ट्राई इट और नॉट. ओके क्यूकम्बर प्लस शुगर, यस वाटरमेलन टेस्ट करता है हल्का हल्का. इनफैक्ट एप्पल भी, बट अ माइल्ड वाटरमेलन जिसमें एकदम ब्लैंड वाटरमेलन टेस्ट नहीं होता, वो वाला वाटरमेलन टेस्ट करता है. सेकेंड द मोस्ट वियर्ड एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग वन इज अगर आप लेमन और सिनेमन पाउडर को साथ में खाते हो, इट डज टेस्ट लाइक कोका कोला फ्लेवर. एंड जो एकदम बैम्बूजल्ड करने वाली बात थी ना कि अगर मैंने एप्पल और मेलन को साथ में खाया, मुझे जेन्युइनली हल्का ही सही बट बबल गम फ्लेवर आया. हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर इसमें से आपने कोई वियर्ड फूड कॉम्बो ट्राई किया है, डू लेट मी नो. मैसेज करके मुझे 0543091062 पर. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द वायरल मलाई बन इन दुबई. अगर आपने खाया है, लेट मी नो दैट एज वेल. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Recommends and is this hour मैं बात करने वाली हूँ मलाई बन के बारे में। यार बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वायरल है मलाई बन। एंड जस्ट नॉट दैट, आई जस्ट सॉ कि बहुत सारी फ्लेवर्स में था यार, स्ट्रॉबेरी, कॉफी, चॉकलेट, पिस्ताशी। ऑफ कोर्स दुबई है तो कैसे नहीं होगा पिस्ताशी, द नॉर्मल वन। एंड ये मलाई बन में मलाई मलाई नहीं, रबड़ी यूज होती है। एंड ये सुनने के बाद मुझे ना मेरे घर वाली हम कह देते स्वीट ब्रेड या फिर दूध वाली ब्रेड याद आ रही है। इफ़ यू एवर हैड इट मम्मी के हाथ की, नानी दादी के हाथ की, डू लेट मी नो, मैसेज करके 0543091062 पर।

बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड इन दिस आवर हम बात कर रहे हैं मलाई बन के बारे में, जिसके बहुत सारे फ्लेवर हैं. वायरल हो रहा है ये मलाई बन, एंड जस्ट सिर्फ 5 दिरहम का मिल रहा है यार. स्ट्रॉबेरी, कॉफी, सॉल्टेड कैरमल, पिस्ताशियो, ऑफकोर्स बहुत सारी वराइटीज हैं इसकी. मैंने खाई जाके, एक तो मुझे लगा था यार 5 दिरहम में क्या ही मिल जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली इट डिड टेस्ट गुड. ओके, इफ़ यू लव डेरी आइटम्स लाइक मी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रबड़ी. रबड़ी मुझे किसी में भी डाल के दे तो मैं खा लूँगी. आई मीन जलेबी रबड़ी द पीक कॉम्बो एवर, बट मलाई बन में मुझे बहुत क्वेश्चन थे. बट खाने के बाद, एक बाइट लेने के बाद, वो सारे क्वेश्चन शांत हो गए मेरे टेस्ट बड्स के साथ. दिस इज़ फॉर 5 दिरहम्स जो आपको करामा वाली साइड मिल जाएगा. किसी से भी पूछ लेना यार मलाई बन खाना है मुझे. मलाई बन की बहुत सारी लोकेशंस वो आपको बता देंगे, लेकिन ये घर पे बनाना, इसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं. अंटिल देन यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

Big 106.2 and this is Avni and baat kar rahe hain hum big recommends ke bare mein and in this hour recommendation of this hour is malai bun. Bahut trending chal raha hai, viral chal raha hai Instagram par aur jaise jaise videos aati hai na man karta hai yaar abhi screen se nikal ke kha lo. And ye 5 dhirm ka mil raha hai aapko Karama mein and bahut sare flavors hain, just told you strawberry, coffee, salted caramel, pistachio. Lekin agar ye ghar pe banana hai yaar, bun to bahar se leke aana padega hai na, itna gaon kare, rabdi ghar pe ban sakti hai lekin the quantity you want have वो बाहर से भी तो जाके वही पड़ेगा. एंड जेन्युइनली टेलिंग यू इट्स जस्ट द बन जो नॉर्मल बेकरीज में मिलता है वो वाला बन है विद रबड़ी, दैट्स इट. देयर इज नो अदर इंग्रेडिएंट यूज. और तभी खाते ही एक बाइट लेते ही मुझे लगा रियली ये पूरी की पूरी डिश सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से दो चीज़ों से बनी है. आई वॉज बैम्बूजल्ड. वेल इफ यू हैव ट्राइड मलाई बन आप बताओ मुझे आपको कैसी लगी, मैसेज करके 0543094309.

0: Just love me.
1: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ.
2: That's it.
1: पर definitely करता हूँ.
3: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2.
2: The beat of Bollywood.
4: भाई दुबाइट करना ना हमारी आदत हो चुकी है. वेल, ये वाली आदत इस फ्लेवर में अच्छी थी कि नहीं थी बताती हूँ मैं आपको. दिस इज बिग 106.2. मैं हूँ अवनी एंड चल रहा है द बिग रेकमेंड, जिसमें एक और वायरल चीज ऐड हो चुकी है, विच इज डाइट कोक. डाइट कोक नॉर्मल तो सबने पी है, ऑफकोर्स हम सब पीते रहते हैं, लेकिन द फ्लेवर दुबई चॉकलेट, वो वाला फ्लेवर आ चुका है डाइट कोक में. इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारी मुझे रील्स आ रही थी एंड आई हैड टू ट्राई इट, आई हैड टू ऑर्डर इट. 6 packs का मैंने वो ऑर्डर किया, टेस्ट किया. बताती हूँ दुबई चॉकलेट डाइट कोक मुझे पसंद आई नहीं आई, रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी टॉकिंग अबाउट इन दिस आवर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

लाइक 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मैं बात कर रही थी जो कि हमारी जीरो शुगर कैंस होते हैं उसमें दुबई चॉकलेट फ्लेवर आया है, दुबई चॉकलेट कोला. द मोमेंट आई सिप्ड इट आई एम टेलिंग यू इट टुक मी 3-4 seconds मोर टू डाइजेस्ट कि मैंने क्या टेस्ट किया है. स्टार्टिंग में वो जीरो शुगर कोला ही टेस्ट करती है बट एज यू गल्प इट डाउन इट टेस्ट लाइक पिस्ताशियो आइसक्रीम. इमेजिन जो आपको दुबई चॉकलेट के अंदर की फिलिंग मिलती है ना वो आपको कोला कैन में मिल गई है. दैट टू जीरो शुगर एंड टू समवन लाइक मी जिसको खाना इतना पसंद है जीरो शुगर तो होना ही चाहिए. चाहे मैं उस जीरो शुगर ड्रिंक के साथ समोसा क्यों ना खा रही हूँ लेकिन नहीं. आई ओनली हैव माई ब्लैक कॉफी एंड जीरो शुगर ड्रिंक्स. यू टेल मी 0543091062 पे मैसेज करके इफ यू हैव एवर ट्राइड दिस दुबई चॉकलेट जीरो शुगर कोला कैन. And till then, keep it locked to Big 106.2.

फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. एंड वन थिंग आई विल रिकमेंड यू हाईली इज टू फॉलो दिस पेज 106.2 बिग एफएम ऑन इंस्टाग्राम. और क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत ही क्रेजी फन रील्स वहाँ पर आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसका मन करेगा कि मैं अपने दोस्त को जरा भेज के देखूँ वो चैलेंज कंप्लीट कर सकता है या कर सकती है या नहीं. गिवन दैट 106.2 बिग एफएम इज इंस्टा हैंडल, मुझे भी फॉलो कर सकते हो आप अवनी आर के पेज पर AVNIY RRR. मिलती हूँ मंडे को फिर से इन द मॉर्निंग. मंडे ब्लूज फिलहाल हल्के हल्के आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कल सुबह शो के साथ खत्म हो जाएंगे. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: करने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।